कम कहीं ज्यादा कहीं कम कहीं ज्यादा कहीं कम अर्रम तर्रम दुनिया के कैसे कैसे हम कहीं ज्यादा कहीं कम।

की मंजिल की तस्वीर बन जाऊंगी। मंजिल का साथ है, मिलने की रात है, तू क्यों उदास है।

प्यारी प्यारी पवन मीठी मीठी चुभन प्यारी प्यारी तड़पती हूँ मैं आरज़ू मैं छुपाए तड़पती हूँ मैं आरज़ू मैं छुपाए।

जब जब तक है तेरी भरी तेरे पहलू में नीलम परी, जब जिस दिन भी खाली हुई जान रह जाएगी।

चल मेरे दिल चले हम वहाँ, ना पैसे का लफड़ा जहाँ, ये तो दुनिया है व्यापार की।

बिखरे हुए बाल की सुख आंचल खिले ना कभी, सुख आंचल खिले ना कभी तेरी ममता।

0: अब थोड़ा सा मुस्कुराए रे
1: मुझे कालमा गाड़ी पे चलाओ रे चलाओ चलाओ चलाओ रे काहे दिया घबराओ रे मोरा काहे दिया घबराओ रे रुक जाओ रे जाओ रे रुक जाओ रे ओ मुझे कालमा अब मत चलाओ रे
0: आओ रे आओ रे आओ आओ रे।

तेरा मेरा मेरा तेरा मेरा तेरा तेरा मेरा तेरा मेरा मेरा तेरा था घटा परत जा।

मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मेरा मे

तेरा मेरा मेरा तेरा मेरा तेरा तेरा मेरा तेरा मेरा मेरा तेरा था ए घटा बरस जा ए पवन ओ झूम जा।